पिता पुत्र का प्रेम दिखलाए, साक्षी है राम भगवान हमारा। रामायण स्पीक्स ऑफ द लव बिटवीन अ सन एंड हिज फादर एंड दिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय श्री राम एंड द किंग दशरथ। भ्रातृ प्रेम रामायण गावे, ऑफ कोर्स द रामायण सिंग्स द लव बिटवीन ब्रदर्स एज एग्जेम्प्लीफाइड बाय लक्ष्मण एंड भरत। पतिव्रता धर्म रामायण बतलावे, इट रिमाइंड्स अस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस एंड दिस रिलेशन इज एग्जामिन्ड केयरफुली इन दिस ब्यूटिफुल सिनेरियो वेयर अनुसुया स्पीक्स टू सीता। पिंदा कर्म रामायण दिखलाए, साक्षी है भरत और राम हमारा। ऑफ कोर्स एम्फसिस इज प्लेस्ड ऑन पितृ यज्ञ इन रेफरेंस टू द स्टोरी ऑफ रामायण विथ सच परफॉर्मेंस बाय श्री राम

दुर्गा आदि शक्ति है, निर्बल निर्धन मानव का बल है माँ दुर्गा। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के जितने नाम और रूप उल्लेखित हैं, सभी नाम और रूप सर्वथा और सर्व स्थानों पर पूजित हैं। माता दुर्गा देवताओं की शक्ति में है, भक्तों की भक्ति में है।

0: दोस्तों, मैं शिव कुमार हूँ हॉलैंड से. यू आर लिस्निंग टू संगीत 106 FM.
1: Is dad waking up with back pain? This Father's Day, City Furniture has the expert solution. Introducing the all-new exclusive Serta Auto Expert Rest 10-inch mattress. Queen or king size, your choice. Only 1,999.